मुझे आज दी अच्छा दी मैचन अरिया को आदो इया दी ऐया पे यक्षी की दी माँ हा अजंदा किसी दी तो नंसा को ई आज या भी इन इतना आर दी अपेरेंट इया दी रिवर्सल डंडिंग ऑफ अकादी रिलीज ये इया दी फॉर्मल एनवायरनमेंटल हेल्थ अजंदा किसी आज दी खेद दे ये भी